0: आबादी तोर बाजा आ गए मुटीगंज के राजा।
1: ए बेटा, तुम्हारी हैसियत के डीजे वाले रोज

0: at the properly.
1: What?
0: हरि गोविंद बाबा हाई टेक सामने से हट जाइए, अब मैं डीजे पे कदम रखने वाला हूँ।